निर्मल सुभाय मृतां की बानी एक नाम रमाय समानी दुख रो बिन से पै परम साधना निर्मल तां के कर्म सब ते ऊचता की शोभा बनी दान के गुण नाम सुखमनी।

Satyanam ki laga pukha tapukha khai chaliya dukha so kyo misra meri mai. Satya sahib satya nai rahao satyanam ki tel vadayai. आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलकै आखण पाहे वड़ा न होवै घट न जाए ना यूह मरै ना होवै सोग देंदा रह ना चुकै भोग गुणे होर नाही कोए ना को होवा ना को होए जे वड़ आप ते वड़ तेरी दात जिन दिन करक कीती रात खसम विसार है ते कम जात नानक नामै बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सतगुर सरनाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरदेव

अनेक तेरे अनेक पढ़ बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खटकर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वड अवर न कोई।

सर्व ठौर मोह सहाय दुष्ट दोख तेल हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते कौमाक तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बोपीद कह हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे वो सब तोहे बखान्यो दोहरा।

राम कली महला तीजा आनंद को अंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया शब्दों ता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया

आनंद सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे।

गुरुप्रसाद जह हर सिमरन पया तह उपाद गत किन्नी वड पागी हर जपना जन नानक कौ गुर एह मत दीनी

अचल छलाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल, चवर छतर तखत दे मालक सतगुरु। हाजरा हजूर जहरा जहुर, सर्ब कला भरपूर, राजान राज पानान पहान, देवान देव उपमा महान, दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगम विभूते, सर्ब सांझी वालता दे राहबर, ज्ञान दे भंडार दया सिंध, जगत गुरु शब्द गुरु, गुरता गदी तखत ते विराजमान सुभाए मान सतगुरु। दसा हां पातशाहियां दी आत्मक जोत, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी, पावन पवित्र हजूरी गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यार वाली गुरु सवारी, खालसा साध संगत जीओ। सतगुरु जी दी महान बख्शिश कृपालता दा सदका, संध्या वेले दे सजे हुए दीवाना दे अंदर आप जी ने जुड़ बैठ के बहुत ही अदब सत्कार सहित सत्कार जो कीर्तनियां पासों रबी गुरबाणी दे कीर्तन सरवण कीते ने, उपरंत जिहड़ा समा प्राप्त होया है लड़ीवार चल रही भाई गुरदास जी दीआं वारां दी विचार आप जी सरवण करदे। अज दी लड़ी दे विच सतवीं वार दी तेरहवीं पौड़ी दा पाठ आप जी ने सरवण कीता। भाई गुरदास जी ने जो उपदेश गुरमत दी सिख्या आपां सारयां नूं बख्शिश कीती है, और गुरबाणी दे अंदर सिख नूं सुचजे जीवन नूं जीवन वास्ते जो गुरमत दा उपदेश है उह विचारां दी आपां सांझ करनी है। आपां सारे ही सतगुरां दे सन्मुख हो के कुछ ना कुछ प्राप्त करन वास्ते आउने हैं, लैण वास्ते आउने हैं, और जे कुछ लैके ना जाइए खाली चले गए फिर जीवन दे अंदर अपने इस वडमुले समय नूं आपां बहुता सफला नहीं कीता। ये भी नहीं आपां कह सकते कि समा सफल नहीं है। सतगुरु दी चरण शरण दे विच बैठिया एक एक पल वह साडा सफला हुंदा है, लेखे विच लगदा है, गिणिया जांदा है।
ਪਰ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ

परमेश्वर परमेश्वर है, आकृत आकृत है, अमृता अमृत है, अजमाकृत है, अमृता अमृत है, नरनायक है, खलकायक है, विश्वम्बर है, करुणालय है, निपनायक है, सर्पायक है, पापंजन है, अर्गंजन है, रिप्तापन है, निपजापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता करें, हरता हरे, परमात्मा सर्वात्म आत्मबस है, जस के जस है, भुजंग पर्यात शानदार

सिमृत शास्त्र भेद सब वेद कहे हम एक न जानियो। श्री यशपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहो सब तो हे बखान्यो दोहरा। सगल द्वार कहो छाड़ के गहयो तुहारो द्वार।

कि कर्म कमाया तुझ शरीरा जा तू जग मह आया जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन न वसाया। गुरप्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया कहना इहो शरीर प्रवण होआ जिन सतगुर स्यों चित लाया ए नेत्रो हो मेरे हो हर तुम मैं जो धरी हर बिन अवर न देखो कोई हर बिन अवर न देखो कोई नदरी हर निहाल आए हुए संसार तुम देख दे यो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर न कोई कह नानके नेत्र अंध से सतगुर मिलिए दिव्य दृष्ट होई ए श्रवण हो मेरे हो साचे सुनने नो पठाए साचे सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया हो रसना रस समाणी सच अलख विडाणी ता की गत कही ना जा कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो साचे सुनने नू पठाए हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसमा गुप्त रखाया गुरुद्वार लाए भावनीक न दसमा द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाओ नव ने तिसदा अंत न जाई पाया कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन बजाया ए साचा सोहिला साचे कर गावहो गावहो त सोहिला कर साचे जिथे सदा सच त्याव हे सचो त्याव है जा तुद भाव है गुरमुख जिना बुझाव हे हो सच सबना का खसम है जिस बख्शे सो जन पाव हे कह नानक सच सोहिला सच्चे कर गावे आनंद सुनो बड़ भागी हो

अमृत नाम जल संचया गुर पै सहाई जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया काटी सिलका ब्रह्म मोकी

कोई बिन सतगुरु किने न पायो, बिन सतगुरु किने न पाया। सतगुरु विचार रखियोन कर प्रगट आख सुनाया, सतगुरु मिले सदा मुक्त जिन मिचो मो चुकाया। उत्तम विचार जिन सच्चे सियो चित लाया, जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

थोड़ी सेव कीती संतोख की जिनी सचो सच ती आया उनी मंदे पैन रखियो कर सुकरी धर्म कमाया उनी दुनिया थोड़े बंदनान पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित्य।

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सुना कूड़ रूपा कूड़ रूप

दातली खाक जमीला था मस्तक लाई है, कूड़ा लाल छड़िया एक मन लगती आई है, पालते वे हो पाई है, जे वे ही कार कमाई है, जे हुआ पूरब लिखिया था तूड़।

0: जाक सब किछ हाथ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
1: हुण जिवें कि सतगुरां ने आग्या बख्शिश की है पल्ले की रस्म होवेगी जिस विच बीबा जी दे पिता जी काका जी का पल्ला बीबा जी ने फड़ाउण के बट उस तो पहला दस केवल एक मिनट के लिए बच्चों ने संबोधन होवेगा। सो मनजोत सिंह एंड पवनदीप कौर, दिस इज अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर बोथ ऑफ यू। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू बोथ आर गोना बी लाइफलॉन्ग पार्टनर्स and you guys are holding the palla in front of Guru Sahib, in front of your loved ones, and it has a deep meaning behind it. So this is a promise that you both are making, that we're going to stay together for the rest of our lives. Har dukh de vich, har sukh de vich, assi ikatthe rehna, ral mil ke rehna, ik dooje da saath dena. This is a commitment that you guys are making, that I'm going to stay loyal to my partner for the rest of my life, and I'm willing to take Pavandeep or Manjot as my lifelong partner. So that's the meaning of the palla. So hun main benti karunga Pavandeep kaur de mata pita Sardar Sarbjit Singh ate mata Kundan kaur ke agge aunge ate palle di jo rasm hai oh da karnge. Palle da shabd gayan karke sarvan kara rahe ne bhai sahab bhai Parminder Singh ji Ludhiane wale te unna da ragi jatha. Aao satsang ji hun palle di rasm ho rahi hai ji. Waheguru ji ka khalsa, waheguru ji ki fateh.

सर्बरहया पर पूरे अंतर बाहर हर प्रभु को मिलो हर जन मंगल गाए जान नानक दूजी लाव चलाई अनहद शब्द बजाए जान नानक दूजी लाव चलाई अनहद

हर प्रभ ठाकुर काज रचाया, तन हृदय नाम विगासी, जन नानक बोले चौथी लावे

सर्विक्स, टोटल 8 राग है, कत्ती कल्ले कल्ले और कत्ती जड़े दो दो हैं, जिदा विचो 13 तो गौड़िया हैं, गौड़ी चेती, गौड़ी गारेरी, गौड़ी मार, उन्ना विचो ए राग है सूही लले, उस्तादा दी बंदिश है, आप भी बड़े प्यार नाल सरवण करो, शब्द दे भाव अर्थ भी बहुत कमाल है, सुर एकाग्र करके, क्योंकि बाणी दी कथा करन कीर्तन विच लोड़ नहीं, अगर ध्यान नाल शब्द नूं समझण दी कोशिश करांगे ते भाव आपे समझ लग जांदे हैं। सो गुरु साहिब कृपा करन, मनोबिरतियां एकाग्र करके नाल गायन करन दा उपराला करो, सतगुरु रहमत करो।